कम कहीं ज्यादा कहीं कम कहीं ज्यादा कहीं कम अररम तररम दुनिया के कैसे कैसे गम कहीं ज्यादा कहीं कम।

तेरी मंजिल की, वो तेरी मंजिल की तस्वीर बन जाऊंगी। मंजिल का पास है, मिलने की याद है, तू क्यों उदास है।

मीठी प्यारी मगन मीठी मीठी चुभन प्यारी प्यारी तड़पती हूँ मैं आरज़ू मैं छुपाए तड़पती हूँ मैं आरज़ू मैं छुपाए।

चल मेरे दिल चले हम वहाँ, ना पैसे का लफड़ा जहाँ। ये तो दुनिया है व्यापार की, इसमें अपना ठिकाना कहाँ। पछताना ना।

0: राम जन्म की बधाई है बधाई है, आज राम जन्म की बधाई है बधाई है।
1: सीता वनवासिनी मंगल मनाए, सीता वनवासिनी मंगल मनाए।

मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मे